जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहेब सिफत सवालियों जिन कीती।

परछाई रंगी रंगी भांति कर कर जनसी माया जन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिसदी वड्याई जो

हर त्याव संतो जी सब दुख विसार नहारा, हर आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंदर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

पादशाही दसवीं कवियो बाज बेंती चौपाई अमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना दान करो व्रत पारा अमरे दुष्ट सब तुम गावो आप हाथ दे मोहे बचाबो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज करता है करे है सब बैरन को आसंग रहे है।

सदा हमारे पच्छा श्रीअस्त जू करे हो रक्षा। राख लियो मैं राखण हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन।

सवारा। नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो, देव दयंत जच्छन बजायो, आदंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सत्रण को बल मोह वध कियो।

मुझे व्रत पर चौन चौन शत्रु हमारे मरिया देख तेरे जग में दम चल राखा मैं और न दल तुम मम करो सदा व्रत बारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाजाब करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दा जान कर कृपा कर मोहे हार पुराम्यान द्वार तोहे अपना जान करो व्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर धारा दा जान दे हाथ उबारो हमरे सब ऐरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विदनाना किशन जता मत चरित्र उचारो छू कोय कबले हो सुधारो कब बाज दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा सो कहे हो जग माहे ज्योते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन द्वी एक है बिबिचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूं कहत सुनाए कब बाज दोहरा ठाट पयो मैं जोर कर बचन का सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुम रे ध्यान गो नितुड़ त्याय है संत

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे बिशन भगत की ए फल होई याद ब्याद शब सके न कोई सम्मत सत्रह सहस बचावन हाड़ बधि प्रथम सुखदावन त्वा प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल भरी लौले हो सुधारा दोहरा।

अनंत सनोबट भागी हाओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हया भरपूरे।

आस हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव ना जाने मेरा अरदास विकयो ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सुहाए वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नव सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जस जेठे सब दुख दाए तेग बहादुर सिमरी है करुणा ने दया वै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थे उन्हां जी सहाय दसा पातशाहां दी जोत धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दे दार दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी पंज प्यारे चार साहब जादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडड किता तिना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघन ने धर्मे सिर दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा जी साहेब बोलो जी प्रथमे सुरत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित्यावै चित्यावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रथिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव ना बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जब पूरन होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखत दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पए सहाई सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटे निकट न जाइयो दूत सलोक महला पंजवा मन में चित वो चितवनी उद्दम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का होए बिचारो तित कर गाव हो सोहेला सिवरियो सिर जन हारो तुम गाव हो मेरे निर्भव का सोहेला हो वारी जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ नित ने जेड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सज्जन असी सड़िया जो होवे साहेब स्यो मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शे कर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विश्व चस्या कड़िया पहरा तिती वारी माह होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कह सहस मूरत न एक तोही सहस पद बिमल न नेक पद गंध भिन सहस्तव गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरन लोभित मनो अंधेनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साध न जानिया तेन अंतर होम में कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे है जम काल सह से डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वट वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हरलाहा आगे बसन सुहेला औद कटे दिनस रहना रे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एव संसार बिकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वे एह रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो और गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहर न

सुर नर सौद मलाय तेन प्रकार किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेव पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया साध संभाल्या एन देख बिचारिया तावत पंचरे कर जान्या काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत पई गुरसा की चीने राम करम्मा नानक उमे मार पतीने तारा चढ़िया लम्मा गुरमुख जाग रहे चूकी अभिमानी राम अण दिन पूर पया सा सुमाणी राम सा सुमाणी गुरमुख मन पाणी गुरमुख साबत जागै साच नाम अमृत गुर दी हर चरनी लिव लागे प्रगटी जोत जोत हमें जाता मन मूह परों पलाणी नानक पूर पया मन मान जागत रैण महाणी अवगुण विसरिया गुणी कर किया राम एको रव रहे अवर नबी आराम रव रहे आ सोई अवर न कोई मणी ते मन मान्या जिन जल थल तिर पवन काट काढ था पिया सो प्रभ गुरमुख जानिया कारण कारण समरथ अपारा तिरबद मेड समाई नानके अवगण गण समान ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका पोला राम हमे मार मिली साचा चोला राम हमे मार हमे गुर खोई प्रगट होई चूके सुख संता पै ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप साता पै पे अड़े कर शब्द पतीनी सवरड़े पिर पानी नानक साध गुर मेल मलाई चुकी कान लुकाणी तुखारी महला पहला उलावड़े पुली पुल पुल पस्तानी पिर सोडड़ी सुती पिर की सार न जानी पिर सोडी सुती अवगण मुती ते तन विदन राती काम क्रोध अंकार वगुती अम्मे लगी ताते उडरन चलिया फुरमाया पसमे पसम समाणी नानक सचै नाम विहुणी पुल पुल पस्ताणी सुन ना प्यारे एक बेनंती मेरी तू निज कर वसैड़ा हउ रुल पसमे टेरी बिण अपने नाए कोई न चाए क्या कहिए क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना गुर सबदी रस पीजै बिण नावे को संगना साथी आवे जाए कनेरी नानक लाहा लै कर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश विदेशड़िए सा नेड़े देंदी सार संभाल तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रा मिला प्यारे मार्ग पंथन जानू विखड़ा क्यों पाइया फिर न पारे सतगुर शब्दी रेव सुनी तन मन आगे रख नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चख मैल बुलाड़िए बिल मन कीजै अणदिन रतड़िए सहज सहज मलीज सो सहज मलीजे रोसन कीजै गर्भ नवार सुमाणी साचे राती मिले मलाई मन मुखे आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फूड़ नरारी नानके आपे आप बसाने गुरमुख तत् बिचारी तुखारी महला पहला मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवर न दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा तारी जग जीवन दाता पुरख विदाता सहज मिले बनवारी नदर करे तू तारे तरिय सच देव दीन दयाला रणवत नानक दासन दासा तू सर्ब जिया प्रतपाला परपुर तार रे अत प्यारे सब दे रब रे आ गुरु रू मरारे गुर रूप मरारे तिर पवन तारे ताका अंतन पाया अंगी जिनसी जंतु पाए नित देवे चढ़ी सुवाया अपरंपर तापे थापो थापे तिस पावे सो होवै नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच।

तू काट काट पूर रह, सेवक जन सेवे ते प्रमाण जन सेविया गुरमत हरे, तिनके कूट सा पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सा बिनसे जिन मन चेते करा दया, तिनका जन्म सफलो सब किया करते जिन गुर बचनी सच भाखया, ते तन जन बड़ पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखमतरे, सेवक जन सेवै ते प्रमाण जन सेव्या गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप जियो तू चलावै प्यारे, हो ते वे चला हमरे आत के सनाए, जा तू मिल है ता हाउ आए मिला, जिनको तू अर मिलो स्वामी सब तिनका लेखा सुड़क गया, तिनकी गण तन करी एको पाई जो गुरु बचनी हर मेल लिया, नानक दयाल तिन उपर जिन गुर का पाणा मन्या पला, तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावै प्यारे, हो ते वे चला तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदी सब करता सृष्ट नाथ, जिन तू ते आया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ, जिन को तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या, तिन के पाप एक निमक सब लाथे जिन गुर बचनी अर जापया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे पौ पाया सनात, तू जग जीवन जगदी सब करता सृष्टा, तू जल थल मेल भरपूर सब उपर सतनी, जन जपयार मन चीत हर जप जप मुक्त कणे, जन जपया हर ते मुक्त प्राणी, तिनके उजड़ मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन पहे सुहेले हर राख लिए रखन हार, हर सत संगत संत संगत जन सुनो पाए, गुरमुख हर सेवा सवल बणी, तू जल थल मेहल भरपूर सब उपर सच तनी, तू थान तनंतर हर एक एक रव्या, वन त्रिण तर पवन साव श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चव्या, सब चवे हर हर नाम करते असंख गण तार त्यावे, सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे, सो सफल दर्शन ते करते जिस हर हृदय नाम सद चव्या, तो थान थनंतर हर एक एक रव्या, तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिलै, जिसके मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हार गुण टिकै, हार गुण हृदय टिकै तिसकै, जिस अंतर भाव पावनी होई बिन पैकने न प्रेम पाया, बिन पै पार न उतरिया कोई, पाओ पाओ परीत नानक तिस लागै, जिस तू अपनी कृपा करै तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देवै मेरे स्वामी मिल तिस मिलै, तुखारी महला चौथा, नावण पुरब बीच गुर सतगुर दर्श पया, दुरमत मैल हरि अज्ञान देर गया, गुर दर्श पया अज्ञान गवाया, अंतर जोत परगासी जन्म मरण दुख खिण मैं विनसी, हर पाया प्रभ अविनासी, हर आप करते पूर्व किया सत गुर कुल खेत नावण गाया, नावण पूर्व बीच गुर सतगुर दर्श पया, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बनी खिण खिण निमख विखा, हर हर

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

सिमरेतन सदबलहारी प्रभु को सिमरे से मुख स्वभावे प्रभु को सिमरे तन शुभ बेहावे प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तन आनंद कनेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संकृपा दे अंदन जाग नानक सिमरन पूरा भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे

मिथ्या तन धन कुटम सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजो बन धन मार, मिथ्या काम क्रोध विकरार, मिथ्या रथ हसी आसो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या त्रो मु अभिमान, मिथ्या सुपर कर तुमार, अस्थिर भगत साधु की शरण, नानक जब जब जीवा हर के चरण, मिथ्या सर्वन भर, मिथ्या सर्वन भर निंदा सुनह, मिथ्या स्पर्ध दर्भ को हिरे, मिथ्या नेत्र

सुख पावै, साध संग बसा गोचर लह, साधु कै संग आजर सहै, साधक संग बसे थान उचाय, साधु कै संग महल पहुचाय, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै गुरबान, साधक संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है।

ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का पूजन ज्ञान नान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

राष्ट्रपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आदम धान ध्यान धारे कई कोट बका विचारे कई कोट नवत नाम ध्यावे नानक करते कांतना पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपा न कठोर कई कोट अभेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हेरे कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया सर्व माहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाभ तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई गुण सिद्ध जति जोगी कई गुण राजे रस भोगी कई गुण पंखी सर्व उपाय कई गुण बाथर बिरखन बजाए कई गुण पवन पाणी बह संतर कई गुण देश भूमंडल कई गुण ससियर सूर नखेत्र कई गुण देव दान इंद्र शेर शतर सगल समग्री अपना सुधारे नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार कई गुण राजस्तामस सात कई गुण वेद पुराण सिमरतर शास्त्र कई गुण की रत

पर न कोई कबू सा संगते पावे उस स्थान ते बाहर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश बंधन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म का संग ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों

तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई स्थूल नायक जन्मे नायक जमरे आपन चलता भी कर आवन जामन दृष्टान दृष्ट आज्ञा कारी तारी सर्वश्रेष्ठ आपे आप सकल में आप अनक जुगत राज थाप उधाप अविनाशी राय कृष्ण खंड धारण धार्य ब्रह्मंड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभा बंद सकल संसार त्रेतन मंद प्रभु के सेवक सकल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे में लय कृपाल गुरु का शब जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनु कृपा करे बट भाग नाम जपत पामे विश्राम नानक तिन पुरख उत्तम कर मान जो किश कर सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभा हो वासो हो करने हार पछाणे सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तुम माए समाये हुए सुख निदान उन्हों बने आए

जंजनमना प्रभु प्रसादा सोजन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अमर सियान सगली शाड़ तिजन की तू सेवा लाग आवन जान नवी तेरा नानक तिजन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जानिया तो सतगुर तिसका नाम तिसका संग से पुदराय नानक हर गुण गाओ अष्टपति सतगुरु सिखी कर प्रतपाल सेवा को गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हर गुर बचनी हर नाम चरा सतगुरु सिखे बंधन घाटा गुर का सिख बिगार ते हट सतगुरु सिखो नाम धंधे गुर का सिख बटभागी है सतगुरु सिखा हरत बल सवार नानक सतगुरु सिखो जी नाल संभाल।

अष्टपदी। जब आकार एक अशना दृष्टिता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिन्हना जाप तब तब हर सो कहो किसे व्यापत। जब अपने आप आपन आप आपार ब्रह्म तब मोह का कि सोबत ब्रह्म आपन के लाभ तीजा नान करने हार न दूजा। जब होबत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी, जब एक हर अगम अपार तब नर्क स्वर कहो कौन अवतार। जब नरगुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सगत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी जो तर है तब कमन ने डर कमन कत डराए। अपन जलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर या गाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप आप ये चर्जा नानक अपन रूपा आप ये प्रजा, जय निर्मल पुरख पुरख पातोता तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल छेदर लगत कौ कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भू गविंद्र बतावे। करण ग्रामन करने हार नानक करते का नाहे सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाए तब कर्माए कब नमाए बाप मित्र सुध पाई। जय सर्व

संगलायन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण ही सेवा की सेव आल जंजाल बिगाड़ते रहते राम नाम संदर्शना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्त करो संत मी सावधान एकागर जी सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन भसे सोत निधान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान प्रगट सब लोए सब देव उज पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक से प्राप्त होए खेम सांत रतन निध बुद्ध ज्ञान सरदा सद विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मन सगत दुदा सुंदर चतुर तदगा बेता सामदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निधान जपै मन गो

ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव हैं दरगह मान।

और असंख मरकर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पाक खाए असंख नंद से करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार ज्योत पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार।

आदेश से आदेश आद अनिल जुदगे कोवेश भुगर ज्ञान दया भंडारण कड़कड़वा जहनाद आप नाथ नाथ सब जाके रिस दे अवरा स्वाद।

कथते के अचज देश के अभिज भेस के अगंज करम के अभंज भरम के अभिज लोक के अदित शोक के अवधुत वर्ण के राजंग के बपूत कर्ण के राजंग प्रवाह के धर्म तुदाह के अशोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतंग कृत्य के छत्रंग क्षत्रिय के

प्रसाद नमंद्रकनाश सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं भवते परमात्म परमात्थे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध व्यपुते अनंगे अनामे त्रिपंगे त्रिकामे निर्प

धारे जेत फिरत शब्द दसन को बस डोल मृदंग नगारे गूंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत हजराज हजारे भूत पिक भवान के पुवत गौन गने ने जात बचारे श्री पर श्री भगवान पजे मनंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नाम दया।

अमृकरो हृदय रचा पूर्ण हो चत के चातव चन्न मंद्रय हमारा अपना जान करो प्रत्यय पारा हमरे दूर सब तुमका वो आपा दे मोह बचाव सुखी बस मोर परिवार सेव से सब करता रा मोर अच्छा नहीं करदा करिय सब बैरन को आय सुंगरिया

कहूँ फूल राजा हवे बैठा कहूँ सिमण पे अवशंकर कैठा श्री सृष्टि दिखाए अचंभव आदिगासरु सियम भव अवरक्षा मेरे तुम करो सिख वार्या सिख संगरो दुज्य उठ तुपाता सगल मिलेश करो रण काता जे

अंगीकारो करे तेरा। सबना गला समरथ स्वामी कह नानक मन मेरे साचे साहिबा, करता तेरा सब कुछ है।

संत साजन भये सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहया बिनवंत नानक गुरु चरण लागे।

0: दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़ै के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ते पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्द ते गावो हरी के राम मन जनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नारो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना सबना गल्ला समरा स्वामी सोको मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देश पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन बसावे नाम जन के मन बसया बाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सा गवाइया कर शां सुख मन आए बसया जन इच्छा सा पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दियां बढ़ियाईया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शत करस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दवस किते काल कंटक मारिया तोर करम पाया तो झुनको सनाम हर के लागे कहे नानक तै सुखवा तित कर अनहद वाजे साची लेवे बेदय नमानी देह नमानी लेवे भज क्या करे बेचारिया तुद बाद समरत कोई नहीं कृपा कर बनवारिया इसनो होर थाओ नाही शब्द ला सवारिया कहे नानक लेवे भजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलब कटे ज्ञान सारे अंदर जनका मोह तुटा तनका सब सचे सवारिया कहे नानक हे आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जे तू दे सोई जन पावे पावे ते सो जान दे जिसू होर क्या करे बेचारिया एक परम पुले फिरे दह दस एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन पाया निर्मल जिन्ना पाना पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे ओ कत करे कहानी कत केरी कत द्वारे पाइए तान मान धन सब सब गुर को हुक्म मन्या पाइए हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथ कथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने ते कन्ने चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरा ए माया मोनी जनित परम पुलाया माया ते मोनी जिन्ने किती माया ते मोनी तिन्ने किती जन ठगोली पाया कुर्बान कीता तिसे बिटो जन्म

लावही। तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई, सरसिहिरी लै भर जा संग लाई पांचो आर जा। सुरमा नंद पास कर आई चंद्र बिंब मंगलन सुहाय, सरस बाण वाहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा, हिठ पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी।